रॉकेट लेके आना है गोल्डन बीच कैंप ग्राउंड साइट 186 फॉर अ 23 ईयर ओल्ड फीमेल सीवियर नोज ब्लेड रिपीटिंग टू रॉकेट लेक EMS for Golden Lake Campground, site 186 for a 23-year-old female severe nosebleed at 1825.